0: सकना कोई जोदावन कार। हो
1: केड़ा सूरमा है अगे साई राज दे, केड़ा सूरमा है अगे साई राज दे, खाड़ सके ना कोई जोदा बल।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याई।

की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपै छंद त्वै प्रसाद। चक्कर चहन अरबरन जात अरपात नहिन जीह। रूप रंग अर रेख भीख को कह ना सकत कीह। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गुणिजै। त्रिपवन महीप सुर नर असुर नीत नीत बण तृण कहत। त्वै सर्व नाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग प्रयात छंद नमस्तंग काले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग नूपे नमस्तंग पेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग धामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते।

है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, चंज है, अमीक है, रफीक है, तंद है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अघम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग पर्यात छंद, नमो सर्वमान्य समस्ती निधान्य, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे, परभंगी परमाथे समस्ती विभूते, कलंकंग बिना नेक लंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो सस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेत देवे सोतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो भूप भूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगी, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सचदानंद, सर्वं प्रणासी, अनूपे अरूपे, समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा विरद कर्ता, अधो उर्द अर्धंग अगंग ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं पुरुषपालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग, अछेदी अभेदी अनामंग कामंग, समस्तो पराजी समस्त स्थितामंग, तेरा जोर चाचरी छंद, जले है थले है, अपीत है अपेय है, प्रभु है अजू है, आदेश है अपेस है, पुजंग प्रयात छंद, अगाध्य अवाध्य आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्य समस्ती निधान्य, नमस्तुंग निर्नाथे, नमस्तुंग परमाथे, नमस्तुंग अगंजे, नमस्तुंग पंजे, नमस्तुंग काले, नमस्तुंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्रंग, नमो सर्वदृष्टंग, नमो सर्वकृत्संग, नमो सर्वरंगे, त्रिभंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे, अखिजे अपिजे, समस्तंग प्रसिज्जे, कृपालंग स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी, सदा सर्वदा हृदय सिद्धंग निवासी, चरपट छंद, त्वय प्रसाद, अमृत कर्मे, अमृत धर्मे, अखल जोगे, अचल भोगे, अचल राजे, अटल साजे, अखल धर्मंग, अलख कर्मंग, सर्वंग दाता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग भाने, सर्वंग माने, सर्वंग प्राणंग, सर्वंग त्राणंग, सर्वंग भुगता, सर्वंग जुगता, सर्वंग देवंग, सर्वंग पीवंग, सर्वंग काले, सर्वंग पाले, रूआल छंद, त्वय प्रसाद, आद रूप अनाद मूर्त, जोन पुरखा पार, सर्वमान त्रमान, देव पेव आदि उदार, सर्व पालक, सर्व कालक, सर्व कोपन काल, जतर तत्र विराज ही, अवधूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर, रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूर्त, जोन आदि सीख, देश और न पीस जाकर, रूप रेख न राग, जतर तत्र दशा विशा हो फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत ताम हूं नह जाहे, सर्वमान सर्वतरमान सदैव मानत ताहे, एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जान ही जिह वेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सुजानई केह जीव, तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, चक्कर बकर फिर चतर जक मानई पुरतीन, लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जिह जाप, आद देवानाद मूर्त थाप्यो सब जिह थाप, परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वयं पवगण भंजन हार, कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख अदेश, धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपीस, अंग राग न रंग जाक है जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम, आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत, अंगहीन पंगा नातम एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पीख, सर्व शास्त्र न जान ही जिह रूप रंग अर रेख,
परम वेद पुराण जा कह नित भगत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवहि बहु चित मद पार छंद त्वे प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु सहान साहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग आबा अपंग गत मित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपह निकाम आत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अनदंड।

राजा हवे बैठा कहूं समट पयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आरजुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुझ तब सरणी परी तिनके दुष्ट दुखित हवे मरी पुरख जवन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारी जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होय ताहि सब काल दुष्ट अरिष्ट त्रय तत्काल कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट।

काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै। गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै एहन सुसहज सुपाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अर्शों कुरसों चटी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह

अंदर सुभाए मान सत संगी जनो आओ सतगुरु दे चरणा विच बैठ के आप जी गुरमत विचारा श्रवण करके सतगुरु दी बख्शिश लैके अपने जीवन दियां घड़ियां नूं सफल कर रहे हो। अज दे ए विशेष दीवान खास करके शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी अंतला समा उन्हां दा जड़ा कूच करन दा दिन है अते नाल नाल महापुरख संत बाबा गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले उन्हां महान महापुरखां दी याद विच अंतले समें नूं चेता करदियां उचेचे तौर ते दीवान सजाए गए ने। बेअंत विचारां आप जी श्रवण कर रहे सी।

मेरे मन हुण ध्यान रखना प्लीज, मेरे मन विच एक इच्छा, मेरी एक विश आ महाराज जी, मेरी एक डिजायर आ। जिवें मैं तुहानूं कहा एम ऑफ लाइफ साडा की होना चाहीदा सी, की बनना सिख। हुण इह शब्द विच महाराज कहिंदे आ मेरे मन विच एक इच्छा है, मेरे मन की एक डिजायर है, मेरी एक विश है। वह की आ महाराज? मैं तुहाडे चरण परसणे आ। परसन का मतलब की हुंदा? टच करना, थोड़े चरणा नूं छूना, थोड़े चरणा विच मथा टेकना, थोड़े चरणा ते हाथ ला के थोड़ी चरण धूड़ी अपने मथे नूं लाउणी। है ना? की कहा महाराज ने? मेरे मन प्रीत, प्रीत कहिंदे आ प्यार नूं। मेरे मन विच एक प्यार जागिया, मेरे मन विच एक इच्छा जागी आ, मेरे मन विच एक तांग जागी आ, मेरे मन विच एक तड़फ लगी आ, मेरे मन विच एक शौक जागिया, मेरे मन विच एक लालच लगिया। कादा लालच, कादा शौक, कादा प्यार, कादी तांग? महाराज जी थोड़े चरण छूने आ। समझ लगी? साडा एम ऑफ लाइफ की आ? भई प्राप्त मानुख देहुरिया, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। बोलो,